9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज़ हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: जी सामिन, गीत ने स्काई ने मैप आपने सुना, कैसा लगा?
1: मुझे तो बहुत पसंद आया। और अब जापानी मुहावरों और कहावतों पर मुश्तमिल मेरा पसंदीदा सिलसिला है जापानी कहावत गरी।
2: इस सिलसिले में हम जापान के जबान जदयाम मुहावरे पेश करते हैं।
0: आज का मुहावरा है कहो वो नित्ते माते, माफ कीजिएगा, कहो वा नित्ते माते।
2: इसका लफ्जी मतलब है नतीजा आने या इनाम मिलने के इंतजार करने के दौरान नींद।
1: चूंकि किस्मत इंसान के बस से बाहर होती है, इसलिए बेहतर है कि जल्दबाजी या जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि सही मौके का सुकून से इंतजार किया जाए।
0: जी, ये है इस मुहावरे का इस्तलाही मानी। और इसमें लफ्ज का हो यानी इनाम या बदला बुद्ध मत का तस्वुर है, जो उस इनाम की तरफ इशारा करता है जो किसी को पिछली जिंदगी के उसके अमाल के नतीजे में मौजूदा जिंदगी में मिलता है। इसका मतलब खुशकिस्मती मिलना भी है।
2: इस जुमले का मतलब यह नहीं है कि लापरवाही या सुस्ती से काम किया जा सकता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी ताकत या वसाइल सर्फ करने के बाद इंसान को पुरसकून और मुस्तहकम जहन के साथ अच्छी खबर का सब्र से इंतजार करना चाहिए।
1: वाकई कामयाबी तो सब्र से इंतजार करने वालों को ही नसीब होती है।
0: हमारे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा।
2: बिल्कुल।
0: समझ, ये कहावत रवायती इरोहा कारुता मुहावरों में से एक है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
0: जी सामिन, आपको याद दिलाते चलें कि अप्रैल में हमने एक सिलसिले में जापान में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए गैर मुल्की जुबानों में मुआवनत की फराहमी के बारे में बताना शुरू किया था। अब कुछ तो तातुल के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं।
2: किसी शख्स के शदीद अलील या जख्मी होने की सूरत में हंगामी नकल व हमल के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाती है। नई सीरीज में एम्बुलेंसों और हंगामी हालात में उन्हें इस्तेमाल करने के मौजूद तरीके के बारे में बताया जा रहा है।
1: इस सिलसिले की पहली किस्त में 5 अप्रैल को एम्बुलेंस सर्विस पर तवज्जो मरकूज करते हुए बताया गया था कि जापान में जब कभी एम्बुलेंस बुलाने के लिए 119 पर टेलीफोन करें तो टेलीफोन ऑपरेटर जरूरी मालूमात हासिल करता है। ऐसे मौके पर टेलीफोन पर बात करते हुए

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 के

किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। इस बार आपके पत्रों के साथ लेकर आ रहे हैं एक मेहमान के साथ खास बातचीत। ये कौन है और किस बारे में है, आइए सुनते हैं।

0: मित्रों, हमने अपने कार्यक्रमों में अक्सर चर्चा की है कि भारतीय पर्यटकों के बीच जापान काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। हर साल भारतीय सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
1: जी, और बीते दिनों पाक कला विशेषज्ञ और सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर नेहा दीपक शाह जापान आई थी और हमें उनसे बात करने का मौका मिला। नेहा जी ने अपना परिचय देते हुए हमें बताया,
2: करीबन 5 साल से आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट। आजकल वीडियो कंटेंट ज़्यादा चलता है, सो मैं टिपिकली काफ़ी सारा रेसिपी कंटेंट बनाती हूँ। बचपन से मैं एक वेजिटेरियन रही हूँ, दैट इज़ व्हाई जो मैं कंटेंट बनाती हूँ इट्स मोस्टली वेजिटेरियन फूड। इट्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल कंटेंट बिकॉज आई लाइक टू ट्रैवल। मुझे लगता है कि आई लाइक टू शेयर जो चीज़ें मैंने वहाँ एक्सपीरियंस की हैं फ्रॉम अ वेजिटेरियन पर्सपेक्टिव, मुझे वो शेयर करना अच्छा लगता है।
0: जापान के खाने के बारे में आम धारणा यही है कि यहाँ मांसाहारी भोजन ही मिलता है, लेकिन नेहा जी ने बताया कि वे विशुद्ध शाकाहारी हैं, तो जापान में भोजन को लेकर उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा क्या? क्योंकि अक्सर शाकाहारी पर्यटकों की यही शिकायत रहती है।
1: चलिए इस बारे में नेहा जी से ही उनके अनुभव जानते हैं।
2: आज मेरा 14th डे है इन जापान, मैंने एक भी इंडियन मील नहीं खाया है, यू नो, सो अगर ऑन एन एवरेज भी आप पकड़ो, मैंने 28 मील्स खाए हैं, मोर ज़्यादा ही खाए हैं। वो 28 मील्स हैव टिपिकली ऑल बीन जापनीज। कावागुचिको में भी हमको वीगन फूड मिल गया बहुत ईजिली, हमें नारा में भी बहुत अच्छा इनफैक्ट नारा हैड सम एक्सेप्शनल फूड, माइंड ब्लोइंग। ओसाका में भी एक्चुअली सम ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट्स ओसाका में थे, एंड क्योटो हैड फिनोम, मतलब मुझे लगता है जापान का बेस्ट ग्योज़ा जो मैंने खाया, एंड आई एट ग्योज़ा एट लीस्ट लाइक 15 जगह इन क्योटो। क्योटो वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था एक्चुअली, क्योटो का खाना भी बहुत अच्छा था। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे, बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, जो मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा तोफू आगेदाशी कभी नहीं खाया है। इट वॉज सो गुड, यू नो। सो लाइक आई सेड कि दीज आर ऑल क्लासिक रेस्टोरेंट्स जिन्होंने अडेप्ट किया है टू फाइंड, यू नो, टू मेक वीगन फूड अडेप्टेबल, क्योंकि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे वेजिटेरियंस आ रहे हैं। इट्स नाइस टू सी ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट्स केटर टू वेजिटेरियंस एंड वीगन्स।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। ग्योज़ा यानी जापानी मोमो और रामेन हुआ जापान का सूप नूडल जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है।
1: जी, रामेन और ग्योज़ा जापान का लोकप्रिय व्यंजन कहा जा सकता है।
0: वैसे कितनी अच्छी बात है कि वे टोक्यो ही नहीं जापान के अलग अलग शहरों में भी जापान के मूल स्वाद का आनंद ले सकें, वो भी शाकाहारी।
1: जी हाँ, बीते कई साल में मैंने अनुभव किया है कि यहाँ अब वीगन खाना काफी आसानी से मिलने लगा है। इस बढ़ते वीगन चलन के बारे में नेहा जी ने कहा,
2: इनफैक्ट मैंने कई सारे रेस्टोरेंट्स में डाइन किया, आई गॉट टू डाइन एट सम मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट, सम लोकल रेस्टोरेंट, स्ट्रीट स्टाइल फूड, सारा कुछ, मतलब बिकॉज जापान बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो रहा है, जापान का खाना बहुत फेमस हो रहा है। एज अ वेजिटेरियन ऑफकोर्स मुझे लगता है 10-12 साल पहले अगर लोग बोलते तो ये सही था कि अरे जापान में बहुत वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, पर मुझे लगता है कि वीगन फूड हैज़ बिकम अ थिंग इन जापान एज वेल। बहुत सारे डेडिकेटेड वीगन रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे डेडिकेटेड वीगन मेन्यूज़ है, वेजिटेरियन मेन्यूज़ है। ये प्रोग्रेशन देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी बाय द बुक्स कंट्री है, राइट, वो कुछ ज़्यादा चेंजेस जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट वॉज़ नाइस टू सी कि किस तरीके से इतना उन्होंने अपने ट्रेडिशनल क्यूजीन को वीगन फूड में अडेप्ट किया है। आज मैं एक रेस्टोरेंट में गई जो शिबुया में है, इट्स कॉल्ड वीगन सुशी, इनक्रेडिबल। मतलब अगेन, इंडिया में बहुत सुशी मिलती है बट वो काफ़ी इंडियनाइज्ड है, बट टू टेस्ट ऑथेंटिक सुशी मेड बाय जापानीज पीपल जस्ट द वे इट्स सपोज टू बी, वो भी वेजिटेरियन, वीगन, नॉट इवन वेजिटेरियन, वीगन, वॉज माइंड ब्लोइंग, वॉज वेरी वेरी नाइस।
0: वाकई इस तरह के बदलाव अपनाने से जापानी व्यंजनों की लोकप्रियता दुनिया भर में और बढ़ेगी।
1: नेहा जी, ना सिर्फ खाना बल्कि जापानी लोगों की सहज कार्य दक्षता और परिश्रमी स्वभाव की भी कायल हुई। उन्होंने एक रेस्तरां के बारे में अपना यादगार अनुभव बयां किया।
2: ओसाका में एक रेस्टोरेंट है, इट्स अ वीगन रेस्टोरेंट, इट्स अनरियल। बड़ा जगह है, छोटा जगह नहीं है। एक औरत उस पूरे रेस्टोरेंट को चलाती है एंड इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग टू सी हाउ शी फंक्शंस। आई वुड गो जस्ट टू एक प्रोजेक्ट स्टडी के लिए, बिकॉज उसने इतना अमेजिंगली हर चीज़ को वहाँ पे क्रिएट किया है। एक बूथ है जहाँ पे वो ऑर्डर लेती है, वही ऑर्डर लेती है, वही खाना पकाती है, सब कुछ वही कर रही है। ग्राउंड फ्लोर पे ऑर्डर लेती है और हैव टू सिट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। उसने अपना नीचे के बूथ का प्रोजेक्शन ऊपर दिया है एंड हर चीज़ वहाँ पे वॉल्स पे मैंशनड है। सिर्फ एक वॉल पे नहीं, हर वॉल, तो आपकी हर साइट में वो इंस्ट्रक्शंस मैंशनड है। मतलब लाइक आई सेड कि एक कंज्यूमर के दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे 100% उसका आंसर वहाँ लिखा हुआ है। मतलब बहुत क्यूटली उसने एक चीज़ लिखी थी। तो मैं ऊपर गई एंड मुझे नीचे वापस आना था तो कुछ ऑर्डर देने के लिए, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए। उधर लिखा हुआ था कि आई एम नॉट हियर राइट नाउ, नो आई एम कुकिंग राइट नाउ, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, प्लीज़ फील टू हेल्प योर सेल्फ विद अ ड्रिंक, एवरी ड्रिंक इज़ 200 yen, एंड इन केस आई डोंट कम बैक इन 18 मिनट्स, योर ड्रिंक इज़ फ्री। आई वॉज वेरी अमेज्ड, आई लव दैट प्लेस।
0: अरे वाह, क्या कमाल का कौशल और फुर्ती है। उस महिला ने अकेले ही पूरे रेस्तरां की कमान संभाली हुई थी।
1: जी, और देखिए ना, इस महिला का अपने ग्राहकों की साफ नियत पर भी पूरा विश्वास है। अरे कमाई नहीं जी, नेहा जी को एक और मजेदार अनुभव हुआ जिसमें जापानी खाने में भारत का मिश्रण था। वो क्या था नेहा जी ने बताया?
2: आज मैंने एक जगह पे रामेन खाया जिसमें there was a papad. Can you imagine? There was an actual papad in it and he puts a lot of Indian masalas. His ramen has miso but it also has like a lot of, he makes his own curry powder which is like the garam masala. So my taste buds were just confused ki main kya kha rahi hu, and I was like, so culture in general thoda sa, matlab jab hum logo ko milte hain hum unse kuch adopt karte hain, kuch apna dete hain, that's what it is. And yeah, this for me was outstanding. It was not my favorite ramen, but definitely something that I will remember. That I, and this is a Japanese chef. This is not an Indian guy. This is the chef.
0: Ramen mein papad aur garam masala? ऐसा संगम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ।
1: सच में कुछ अलग ही स्वाद रहा होगा। नेहा जी से हमने जानना चाहा कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो जापान आने वाले पर्यटकों को खाना ही चाहिए। उनकी सिफारिश थी,
2: सो डेफिनेटली रामेन। यहाँ पे शायद बहुत सारे रामेन रेस्टोरेंट्स हैं। हर यहाँ पे रामेन इज लाइक दाल, राइट? हर घर की अलग होती है, आपको हर जगह अलग रामेन मिलेगा। कोई दो जगह आपको सेम, मेरे को सेम रामेन नहीं मिला है, इट्स बिन डिफरेंट एवरीवेयर। एज अ वेजिटेरियन आई वुड से डेफिनेटली द ग्योज़ा। अगेन मेरे हिसाब से द बेस्ट ग्योज़ा इन जापान, द वन दैट आई एट वाज इन क्योटो। रामेन अगेन आई एम स्प्लिट, बहुत सारी जगह मुझे पसंद आई। माय फेवरेट डिश फ्रॉम दिस जापान ट्रिप

0: एक्चुअली द कट्सू करी.
1: सो मुझे कट्सू बहुत पसंद है. आई मेक कट्सू, बट द वन दैट आई एट इन ओसाका वॉज माइंड ब्लोइंग. बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि वी वेंट देयर फॉर लंच एंड डिनर. इट वॉज सो गुड. रामेन, ग्योज़ा एंड कट्सू. सुशी, लाइक आई सेड, सबको शायद पसंद नहीं आएगी जापान में, क्योंकि इंडिया में सुशी बहुत अलग मिलती है. इट्स वेरी अमेरिकन.
2: अच्छा, वीगन कात्सु करी भी होती है. मित्रों, असल में कात्सु एक जापानी व्यंजन है. इसे बनाने के लिए मांस या मछली को मैदे में लपेटा जाता है, उसके बाद इसे अंडे के घोल में डाला जाता है और फिर उसे ब्रेड के चूरे में लपेटा जाता है. ये 3 स्टेप्स करने के बाद उसे तेल में तला जाता है. कात्सु काफ़ी कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है.
3: खमाइनी जी, मैं भी यैम यानी जमीकन से बना वीगन कात्सु खा चुकी हूँ. सचमुच वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट होता है.
2: नेहा जी ने हमारे शाकाहारी मित्रों के लिए वाकई बहुत बढ़िया जानकारी दी है. अब जापान आने वाले शाकाहारी पर्यटक निश्चिंत होकर यहाँ के व्यंजन खा सकते हैं और घूम सकते हैं.
3: जी हाँ, और मित्रों, नेहा दीपक शाह के साथ ढेर सारी बातें हुई थी. बातों का ये सिलसिला अगले सप्ताह भी जारी रहेगा. पत्र लिखकर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और जापानी व्यंजनों के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी जरूर बताएं.
2: और देखिए, अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी बताने का, तो फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी.
4: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा. भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर. हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है. सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान.
3: कार्यक्रम चेरी के देश में आपका फिर स्वागत है. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं श्रोता मित्रों के फेसबुक कमेंट से.
2: वैसे आजकल श्रोता मित्र फेसबुक पर डाली जा रही रील्स को काफी पसंद कर रहे हैं. याद है ना, हमने स्टूडियो में रेलगाड़ी बनाई थी और
3: जी हाँ.
2: और बरसों बाद मुझे इससे खेलने में बहुत मजा आया.
3: जी हाँ, हमारा बचपन दोबारा याद आ गया. और देखिए, इस पर बहुत सारे मजेदार कमेंट्स भी मिल रहे हैं. बीते सप्ताह रेलगाड़ी के बारे में चेरी के देश से कार्यक्रम की प्रोमो रील को बहुत लोगों ने देखा. दीपक जोशी ने कमेंट किया, मैं भारत से हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मुझे पसंद आया.
2: पिछले सप्ताह हमने श्रोता मित्रों से चेरी के देश से कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अनुरोध किया था. महज 4 दिन में इसकी पहुंच 5,000 से अधिक लोगों तक थी और लोगों ने अपने विचार भी साझा किए. नानौल हरियाणा से उमेश कुमार शर्मा लिखते हैं, चेरी के देश से कार्यक्रम श्रोताओं के विचारों का मंच है, जिसे मैंने काफी वर्षों तक रेडियो जापान पर सुना है और अब इंटरनेट पर इसे पुनः सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. अरिगातो गोजाइमस.
3: उमेश जी, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के साथ ये स्नेह बनाए रखने के लिए दिल से आभार.
2: ये बात तो है, इंटरनेट पर भी कार्यक्रम के आने से अब समय की पाबंदी नहीं रही. इन्हें 1 सप्ताह तक जब चाहें सुन सकते हैं आप.
3: जी बिल्कुल. और देखिए, पिछले सप्ताह की प्रोमो रील ने कई पुराने मित्रों को जगाने का काम किया है. जी हाँ, कृष्ण कुमार जायसवाल का कमेंट है, चेरी के देश से मेरा बरसों पुराना प्रिय कार्यक्रम है. कैलाश शर्मा कैलाश, लता पांडे, नवीन शर्मा, नरेंद्र कश्यप, राजीव मुवाल ने नाइस और दिल की इमोजी के जरिए अपना प्रेम प्रकट किया है. भई ये इमोजी ठीक है, लेकिन 2 लाइन भी जरा लिख दीजिए.
2: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. वहीं कालीचरण स्नेही लिखते हैं, ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है. जर्नलिस्ट दिलीप यादव ने लिखा है, बहुत खूब है आपका कार्यक्रम. कुमाकाया जापान से राजीव मुवाल ने गुड मॉर्निंग कहा है.
3: आपको भी गुड मॉर्निंग जी. सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया. आगे भी आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है. कार्यक्रम सुने और अपनी राय हम तक पहुंचाएं, फिर चाहे वो फेसबुक पर दो लाइनें हो।
2: जी जी, जापान के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी हमसे पूछें। पत्र भेजने की प्रक्रिया बहुत आसान है। चरी के देश से कार्यक्रम के विवरण में पत्र भेजने की लिंक है,
3: और अगर वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर बैनर पर यहाँ क्लिक कर संदेश भेजें लिखा दिख जाएगा।
2: तो बिना देर किए अपनी राय भेजें। और देखिए, हमारा अगला पत्र है सुरेश अग्रवाल जी का,
3: केसिंगा ओडिशा वाले सुरेश अग्रवाल जी ना?
2: जी जी जी, लिखते हैं, आदरणीय शांग्रीला जी एवं कामायनी जी, सहस्नेह नमस्कार। दिनांक 23 अगस्त के कार्यक्रम चरे के देश से की शुरुआत में सितंबर माह में जापान में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के संबंध में दी गई जानकारी ने मन प्रसन्न कर दिया। आशा है कि इन खेलों से जुड़ी गतिविधियों की पल पल की जानकारी भी आपके माध्यम से हम श्रोता मित्रों तक निरंतर पहुंचती रहेगी।
3: सुरेश जी, पत्र के लिए आभार, आपको जानकारी अवश्य मिलती रहेगी। और मित्रों, आप भी बताइए कि आपको किन तरह के खेलों में रुचि है, क्या किसी तरह का कोई खेल खेलते हैं तो ये भी जरूर बताइएगा, और साथ ही ये बताइएगा कि आप किस खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, किस खिलाड़ी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। आगामी कार्यक्रम में आपके पत्रों को हम जरूर शामिल करेंगे
2: जी।
3: और कमाईनी जी, देखिए, अगस्त का महीना जापान के लिए कई त्रासद स्मृतियां लेकर आता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पहले हिरोशिमा और नागासाकी अणु बम हमले से नष्ट हो गए थे। इस स्मृति सभा की खबर को एक वीडियो क्लिप के जरिए हमने लोगों तक पहुंचाया था।
2: हिरोशिमा पर विश्व के पहले अणु बम हमले की 21वीं बरसी पर आयोजित सभा में देश विदेश के अनेक नागरिकों ने हिस्सा लिया, और प्रातः ठीक 8:15 बजे जैसे सब कुछ थम गया। लोगों ने मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।
3: और जो लोग हिरोशिमा नहीं पहुंच सके, उन्होंने फेसबुक पर कमेंट के जरिए इस क्लिप पर अपनी संवेदना व्यक्त की। करीब 1500 लोगों ने कमेंट किया है। सभी लेना तो संभव नहीं है, लेकिन ये कुछ कमेंट हैं। रवि आनंद लिखते हैं, विकसित देश बनने के बाद भी जापान अपने नागरिकों को नहीं भूला है। समृद्ध जीवन शैली के बावजूद लोगों का स्वभाव विनम्र है।
2: यश कश्यप लिखते हैं, 6 अगस्त को हिरोशिमा अणु बम हमले की 21वीं बरसी पर शहीदों को शत शत नमन। नितिन शर्मा का कहना है, यही देश आज फिर अपनी मेहनत से टेक्नोलॉजी में विश्व में पहले स्थान पर है।
3: पंकज राठौर कहते हैं, वे सभी जापानी लोगों का सम्मान करते हैं। राहुल भारद्वाज ने लिखा है, जापान हमारा अभिन्न मित्र देश है और हम उनके सुख दुख के साथी हैं।
2: मनोज कुमार विश्वकर्मा, हे भगवान, दोबारा ये घटना कभी ना हो, हम जापान के लोगों के साथ हैं। निरंजन कुमार चौधरी ने आह्वान किया है कि विश्व परमाणु विहीन हो ताकि सबका जीवन बच सके।
3: हम सब की भी यही प्रार्थना है कि फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो। कमाईनी जी जानती है, इस क्लिप को अब तक 10,00,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं।
2: यानी कितने लोग हैं जो इस त्रासदी से व्यथित हुए हैं। हिरोशिमा की व्यथा ने उनके दिल को छुआ है। आशा है आगे भी आपसे इसी तरह हमें संदेश मिलते रहेंगे। हमें पत्र भेजने के लिए वेबसाइट पर सबसे ऊपर बैनर पर क्लिक करें, या फिर फेसबुक पर दो लाइनों का संदेश तो लिखा ही जा सकता है।
3: जी, पूरी दुनिया के लिए मंगल कामना करते हुए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अब जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
2: और कामायनी सिंह को। अगले अंक में फिर मिलेंगे।
3: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा, नमस्कार। इस बार आपके पत्रों के साथ लेकर आ रहे हैं एक मेहमान के साथ खास बातचीत। ये कौन है और किस बारे में है, आइए सुनते हैं।

0: मित्रों, हमने अपने कार्यक्रमों में अक्सर चर्चा की है कि भारतीय पर्यटकों के बीच जापान काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। हर साल भारतीय सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
1: जी, और बीते दिनों पाक कला विशेषज्ञ और सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर नेहा दीपक शाह जापान आई थी और हमें उनसे बात करने का मौका मिला। नेहा जी ने अपना परिचय देते हुए हमें बताया,
2: करीबन 5 साल से आई बिन क्रिएटिंग कंटेंट। आजकल वीडियो कंटेंट ज़्यादा चलता है, सो मैं टिपिकली काफ़ी सारा रेसिपी कंटेंट बनाती हूँ। बचपन से मैं एक वेजिटेरियन रही हूँ, दैट इज़ व्हाई जो मैं कंटेंट बनाती हूँ इट्स मोस्टली वेजिटेरियन फूड। इट्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल कंटेंट बिकॉज आई लाइक टू ट्रैवल। मुझे लगता है कि आई लाइक टू शेयर जो चीज़ें मैंने वहाँ एक्सपीरियंस की हैं फ्रॉम अ वेजिटेरियन पर्सपेक्टिव, मुझे वो शेयर करना अच्छा लगता है।
0: जापान के खाने के बारे में आम धारणा यही है कि यहाँ मांसाहारी भोजन ही मिलता है, लेकिन नेहा जी ने बताया कि वे विशुद्ध शाकाहारी हैं। तो जापान में भोजन को लेकर उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा क्या? क्योंकि अक्सर शाकाहारी पर्यटकों की यही शिकायत रहती है।
1: चलिए इस बारे में नेहा जी से ही उनके अनुभव जानते हैं।
2: आज मेरा 14th डे है इन जापान। मैंने एक भी इंडियन मील नहीं खाया है, यू नो, सो अगर ऑन एन एवरेज भी आप पकड़ो, मैंने 28 मील्स खाए हैं, मोर ज़्यादा ही खाए हैं। वो 28 मील्स हैव टिपिकली ऑल बीन जापनीज। कावागुचिको में भी हमको वीगन फूड मिल गया बहुत ईजिली। हमें नारा में भी बहुत अच्छा, इनफैक्ट नारा हैड सम एक्सेप्शनल फूड, माइंड ब्लोइंग। ओसाका में भी, एक्चुअली सम ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट्स ओसाका में थे। एंड क्योटो हैड फिनोम, मतलब मुझे लगता है जापान का बेस्ट ग्योज़ा जो मैंने खाया। And I ate gyoza at least like 15 jagah in Kyoto. Kyoto was very nice. Bahut acha tha actually. Kyoto ka khana bhi bahut acha tha. Ek restaurant hai jahan pe, bahut chhota sa restaurant hai, jo maine apni life mein itna acha tofu agedashi kabhi nahi khaya hai. It was so good, you know. So like I said, ki these are all classic restaurants jinhone adapt kiya hai to find, you know, to make vegan food adaptable, kyunki itne tourist aa rahe hain. डेफिनेटली यहाँ पे वेजिटेरियंस आ रहे हैं। इट्स नाइस टू सी ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट्स केटर टू वेजिटेरियंस एंड वीगन्स।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। ग्योज़ा यानी जापानी मोमो और रामेन हुआ जापान का सूप नूडल जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है।
1: जी, रामेन और ग्योज़ा जापान का लोकप्रिय व्यंजन कहा जा सकता है।
0: वैसे कितनी अच्छी बात है कि वे टोक्यो ही नहीं, जापान के अलग अलग शहरों में भी जापान के मूल स्वाद का आनंद ले सकें, वो भी शाकाहारी।
1: जी हाँ, बीते कई साल में मैंने अनुभव किया है कि यहाँ अब वीगन खाना काफी आसानी से मिलने लगा है। इस बढ़ते वीगन चलन के बारे में नेहा जी ने कहा,
2: इनफैक्ट मैंने कई सारे रेस्टोरेंट्स में डाइन किया। आई गॉट टू डाइन एट सम मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट, सम लोकल रेस्टोरेंट, स्ट्रीट स्टाइल फूड, सारा कुछ। मतलब बिकॉज जापान बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो रहा है, जापान का खाना बहुत फेमस हो रहा है। एज अ वेजिटेरियन ऑफकोर्स मुझे लगता है 10-12 साल पहले अगर लोग बोलते तो ये सही था कि अरे जापान में बहुत वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, पर मुझे लगता है कि वीगन फूड हैज़ बिकम अ थिंग इन जापान एज वेल। बहुत सारे डेडिकेटेड वीगन रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे डेडिकेटेड वीगन मेन्यूज़ है, वेजिटेरियन मेन्यूज़ है। ये प्रोग्रेशन देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी बाय द बुक्स कंट्री है, राइट, वो कुछ ज़्यादा चेंजेस जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट वॉज़ नाइस टू सी कि किस तरीके से इतना उन्होंने अपने ट्रेडिशनल क्यूजीन को वीगन फूड में अडेप्ट किया है। आज मैं एक रेस्टोरेंट में गई जो शिबुया में है, इट्स कॉल्ड वीगन सुशी, इनक्रेडिबल।

0: मतलब अगेन इंडिया में बहुत सुशी मिलती है बट वो काफ़ी इंडियनाइज्ड है, बट टू टेस्ट ऑथेंटिक सुशी मेड बाय जापानीज पीपल जस्ट द वे इट्स सपोज टू बी, वो भी वेजिटेरियन, वीगन, नॉट इवन वेजिटेरियन, वीगन, वॉज माइंड ब्लोइंग, वॉज वेरी वेरी नाइस।
1: वाकई इस तरह के बदलाव अपनाने से जापानी व्यंजनों की लोकप्रियता दुनिया भर में और बढ़ेगी।
2: नेहा जी, ना सिर्फ खाना बल्कि जापानी लोगों की सहज कार्यदक्षता और परिश्रमी स्वभाव की भी कायल हुई। उन्होंने एक रेस्तरां के बारे में अपना यादगार अनुभव बयां किया।
0: ओसाका में एक रेस्टोरेंट है, इट्स अ वीगन रेस्टोरेंट, इट्स अनरियल। बड़ा जगह है, छोटा जगह नहीं है। एक औरत उस पूरे रेस्टोरेंट को चलाती है एंड इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग टू सी हाउ शी फंक्शंस। आई वुड गो जस्ट टू एक प्रोजेक्ट स्टडी के लिए, बिकॉज उसने इतना अमेजिंगली हर चीज़ को वहाँ पे क्रिएट किया है। एक बूथ है जहाँ पे वो ऑर्डर लेती है, वही ऑर्डर लेती है, वही खाना पकाती है, सब कुछ वही कर रही है। ग्राउंड फ्लोर पे ऑर्डर लेती है और आई हैव टू सिट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। उसने अपना नीचे के बूथ का प्रोजेक्शन ऊपर दिया है एंड हर चीज़ वहाँ पे वॉल्स पे मैंशनड है। सिर्फ एक वॉल पे नहीं, हर वॉल, तो आपकी हर साइट में वो इंस्ट्रक्शंस मैंशनड है। मतलब लाइक आई सेड कि एक कंज्यूमर के दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे 100% उसका आंसर वहाँ लिखा हुआ है। मतलब बहुत क्यूटली उसने एक चीज़ लिखी थी, तो मैं ऊपर गई एंड मुझे नीचे वापस आना था तो कुछ ऑर्डर देने के लिए, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए। उधर लिखा हुआ था कि आई एम नॉट हियर राइट नाउ, नो आई एम कुकिंग राइट नाउ, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, प्लीज़ फील टू हेल्प योर सेल्फ विद अ ड्रिंक, एवरी ड्रिंक इज़ 200 yen एंड इन केस आई डोंट कम बैक इन 18 मिनट्स योर ड्रिंक इज़ फ्री। आई वॉज वेरी अमेज्ड, आई लव दैट प्लेस।
1: अरे वाह, क्या कमाल का कौशल और फुर्ती है, उस महिला ने अकेले ही पूरे रेस्तरां की कमान संभाली हुई थी।
2: जी, और देखिए ना, इस महिला का अपने ग्राहकों की साफ नियत पर भी पूरा विश्वास है। अरे कमाई नहीं जी, नेहा जी को एक और मजेदार अनुभव हुआ जिसमें जापानी खाने में भारत का मिश्रण था। वो क्या था नेहा जी ने बताया।
0: आज मैंने एक जगह पे रामेन खाया जिसमें देयर वाज अ पापड़। कैन यू इमेजिन, देयर वाज एन एक्चुअल पापड़ इन इट एंड ही पुट्स अ लॉट ऑफ इंडियन मसालाज। हिज रामेन हैज मीसो बट इट आल्सो हैज लाइक अ लॉट ऑफ, ही मेक्स हिज ओन करी पाउडर व्हिच इज लाइक द गरम मसाला। सो माय टेस्ट बड्स वर जस्ट कंफ्यूज्ड कि मैं क्या खा रही हूँ। आई वाज लाइक, सो कल्चर इन जनरल थोड़ा सा, मतलब जब हम लोगों को मिलते हैं हम उनसे कुछ अडॉप्ट करते हैं, कुछ अपना देते हैं, दैट्स व्हाट इट इज। एंड या दिस फॉर मी वाज आउटस्टैंडिंग, इट वाज नॉट माय फेवरेट रामेन बट डेफिनेटली समथिंग दैट आई विल रिमेम्बर दैट आई, एंड दिस इज अ जैपनीज, दिस इज नॉट एन इंडियन गाय, दिस इज द शेफ।
1: रामेन में पापड़ और गर्म मसाला, ऐसा संगम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ।
2: सच में कुछ अलग ही स्वाद रहा होगा। नेहा जी से हमने जानना चाहा कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो जापान आने वाले पर्यटकों को खाना ही चाहिए। उनकी सिफारिश थी,
0: सो डेफिनेटली रामेन। यहाँ पे शायद बहुत सारे रामेन रेस्टोरेंट्स हैं, हर यहाँ पे रामेन इज लाइक दाल, राइट, हर घर की अलग होती है, आपको हर जगह अलग रामेन मिलेगा, कोई दो जगह आपको सेम, मेरे को सेम रामेन नहीं मिला है, इट्स बिन डिफरेंट एवरीवेयर। एज अ वेजिटेरियन आई वुड से डेफिनेटली द ग्योज़ा, अगेन मेरे हिसाब से द बेस्ट ग्योज़ा इन जापान, द वन दैट आई एट वाज इन क्योटो। रामेन अगेन आई एम स्प्लिट, बहुत सारी जगह मुझे पसंद आई। माय फेवरेट डिश फ्रॉम दिस जापान ट्रिप वाज एक्चुअली द काट्सू करी। सो मुझे काट्सू बहुत पसंद, आई मेक काट्सू बट द वन दैट आई एट इन ओसाका वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि वी वेंट देयर फॉर लंच एंड डिनर, इट वॉज सो गुड। रामेन, ग्योज़ा एंड काट्सू। सुशी लाइक आई सेड सबको शायद पसंद नहीं आएगी जापान में, क्योंकि इंडिया में सुशी बहुत अलग मिलती है, इट्स वेरी अमेरिकन।
1: अच्छा, वीगन काट्सू करी भी होती है। मित्रों, असल में काट्सू एक जापानी व्यंजन है। इसे बनाने के लिए मांस या मछली को मैदे में लपेटा जाता है, उसके बाद इसे अंडे के घोल में डाला जाता है और फिर उसे ब्रेड के चूरे में लपेटा जाता है। ये 3 स्टेप्स करने के बाद उसे तेल में तला जाता है। काट्सू काफ़ी कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है।
2: खमाइनी जी, मैं भी यैम यानी जमीकन से बना वीगन कात्सु खा चुकी हूँ। सचमुच वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट होता है।
1: नेहा जी ने हमारे शाकाहारी मित्रों के लिए वाकई बहुत बढ़िया जानकारी दी है। अब जापान आने वाले शाकाहारी पर्यटक निश्चिंत होकर यहाँ के व्यंजन खा सकते हैं और घूम सकते हैं।
2: जी हाँ, और मित्रों, नेहा दीपक शाह के साथ ढेर सारी बातें हुई थी। बातों का ये सिलसिला अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। पत्र लिखकर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और जापानी व्यंजनों के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी जरूर बताएं।
1: और देखिए, अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी बताने का, तो फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
3: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
2: कार्यक्रम चेरी के देश में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं श्रोता मित्रों के फेसबुक कमेंट से।
1: वैसे आजकल श्रोता मित्र फेसबुक पर डाली जा रही रील्स को काफी पसंद कर रहे हैं। याद है ना, हमने स्टूडियो में रेलगाड़ी बनाई थी और
2: जी हाँ।
1: और बरसों बाद मुझे इससे खेलने में बहुत मजा आया।
2: जी हाँ, हमारा बचपन दोबारा याद आ गया। और देखिए, इस पर बहुत सारे मजेदार कमेंट्स भी मिल रहे हैं। बीते सप्ताह रेलगाड़ी के बारे में चेरी के देश से कार्यक्रम की प्रोमो रील को बहुत लोगों ने देखा। दीपक जोशी ने कमेंट किया, मैं भारत से हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मुझे पसंद आया।
1: पिछले सप्ताह हमने श्रोता मित्रों से चेरी के देश से कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अनुरोध किया था। महज 4 दिन में इसकी पहुंच 5000 से अधिक लोगों तक थी और लोगों ने अपने विचार भी साझा किए। नानौल हरियाणा से उमेश कुमार शर्मा लिखते हैं, चेरी के देश से कार्यक्रम श्रोताओं के विचारों का मंच है जिसे मैंने काफी वर्षों तक रेडियो जापान पर सुना है और अब इंटरनेट पर इसे पुनः सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरिगातो गोजाइमस।
2: उमेश जी, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के साथ ये स्नेह बनाए रखने के लिए दिल से आभार।
1: ये बात तो है, इंटरनेट पर भी कार्यक्रम के आने से अब समय की पाबंदी नहीं रही। इन्हें एक सप्ताह तक जब चाहें सुन सकते हैं आप।
2: जी बिल्कुल। और देखिए, पिछले सप्ताह की प्रोमो रील ने कई पुराने मित्रों को जगाने का काम किया है। जी हाँ, कृष्ण कुमार जायसवाल का कमेंट है, शेरी के देश से मेरा बरसों पुराना प्रिय कार्यक्रम है। कैलाश शर्मा, कैलाश, लता पांडे, नवीन शर्मा, नरेंद्र कश्यप, राजीव मुवाल ने नाइस और दिल की इमोजी के जरिए अपना प्रेम प्रकट किया है। भई ये इमोजी ठीक है, लेकिन 2 लाइन भी जरा लिख दीजिए।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहीं कालीचरण स्नेही लिखते हैं, ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है। जर्नलिस्ट दिलीप यादव ने लिखा है, बहुत खूब है आपका कार्यक्रम। कुमाकाया जापान से राजीव मुवाल ने गुड मॉर्निंग कहा है।
2: आपको भी गुड मॉर्निंग जी। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। कार्यक्रम सुने और अपनी राय हम तक पहुंचाएं, फिर चाहे वो फेसबुक पर 2 लाइनें हो।
1: जी जी। और जापान के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी हमसे पूछें। पत्र भेजने की प्रक्रिया बहुत आसान है। चेरी के देश से कार्यक्रम के विवरण में पत्र भेजने की लिंक है
2: और अगर वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर बैनर पर यहाँ क्लिक कर संदेश भेजें लिखा दिख जाएगा।
1: तो बिना देर किए अपनी राय भेजें। और देखिए, हमारा अगला पत्र है सुरेश अग्रवाल जी का।
2: केसिंगा ओडिशा वाले सुरेश अग्रवाल जी ना?
1: जी जी जी। लिखते हैं, आदरणीय शांग्रीला जी एवं कामायनी जी, सहस्नेह नमस्कार।
4: दिनांक 23 अगस्त के कार्यक्रम चरी के देश से की शुरुआत में सितंबर माह में जापान में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के संबंध में दी गई जानकारी ने मन प्रसन्न कर दिया। आशा है कि इन खेलों से जुड़ी गतिविधियों की पल पल की जानकारी भी आपके माध्यम से हम श्रोता मित्रों तक निरंतर पहुंचती रहेगी।
2: सुरेश जी, पत्र के लिए आभार। आपको जानकारी अवश्य मिलती रहेगी। और मित्रों, आप भी बताइए कि आपको किन तरह के खेलों में रुचि है, क्या किसी तरह का कोई खेल खेलते हैं, तो ये भी जरूर बताइएगा। और साथ ही ये बताइएगा कि आप किस खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, किस खिलाड़ी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। आगामी कार्यक्रम में आपके पत्रों को हम जरूर शामिल करेंगे। और कमाईनी जी, देखिए अगस्त का महीना जापान के लिए कई त्रासद स्मृतियां लेकर आता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पहले हिरोशिमा और नागासाकी अणु बम हमले से नष्ट हो गए थे। इस स्मृति सभा की खबर को एक वीडियो क्लिप के जरिए हमने लोगों तक पहुंचाया था।
4: हिरोशिमा पर विश्व के पहले अणु बम हमले की 21वीं बरसी पर आयोजित सभा में देश विदेश के अनेक नागरिकों ने हिस्सा लिया और प्रातः ठीक 8:15 बजे जैसे सब कुछ थम गया। लोगों ने मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।
2: और जो लोग हिरोशिमा नहीं पहुंच सके, उन्होंने फेसबुक पर कमेंट के जरिए इस क्लिप पर अपनी संवेदना व्यक्त की। करीब 1500 लोगों ने कमेंट किया है। सभी लेना तो संभव नहीं है, लेकिन ये कुछ कमेंट हैं। रवि आनंद लिखते हैं, विकसित देश बनने के बाद भी जापान अपने नागरिकों को नहीं भूला है। समृद्ध जीवन शैली के बावजूद लोगों का स्वभाव विनम्र है।
4: यश कश्यप लिखते हैं, 6 अगस्त को हिरोशिमा अणु बम हमले की 21वीं बरसी पर शहीदों को शत शत नमन। नितिन शर्मा का कहना है, यही देश आज फिर अपनी मेहनत से टेक्नोलॉजी में विश्व में पहले स्थान पर है।
2: पंकज राठौर कहते हैं, वे सभी जापानी लोगों का सम्मान करते हैं। राहुल भारद्वाज ने लिखा है, जापान हमारा अभिन्न मित्र देश है और हम उनके सुख दुख के साथी हैं।
4: मनोज कुमार विश्वकर्मा, हे भगवान, दोबारा ये घटना कभी ना हो, हम जापान के लोगों के साथ हैं। निरंजन कुमार चौधरी ने आह्वान किया है कि विश्व परमाणु विहीन हो ताकि सबका जीवन बच सके।
2: हम सब की भी यही प्रार्थना है कि फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो। कमाईनी जी जानती है, इस क्लिप को अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।
4: यानी कितने लोग हैं जो इस त्रासदी से व्यथित हुए हैं। हिरोशिमा की व्यथा ने उनके दिल को छुआ है। आशा है आगे भी आपसे इसी तरह हमें संदेश मिलते रहेंगे। हमें पत्र भेजने के लिए वेबसाइट पर सबसे ऊपर बैनर पर क्लिक करें या फिर फेसबुक पर 2 लाइनों का संदेश तो लिखा ही जा सकता है।
2: जी, पूरी दुनिया के लिए मंगल कामना करते हुए एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अब जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
4: और कामायनी सिंह को। अगले अंक में फिर मिलेंगे।
2: सायोनारा, नमस्कार।

0: कर भिंडियों को बारीक स्लाइसेस में काट लीजिए। इस तरह से हम भिंडियों के कुदरती रंग और साख्त को इस्तेमाल करते हुए उनसे सितारों की शक्ल की सजावट हासिल कर सकते हैं। अब पकाते हैं किंची तमागो यानी बारीक बारीक कटा हुआ अंडे का क्रेप। किंची का मतलब है चमकती हुई पट्टियाँ और तमागो अंडे को कहते हैं। तेज जर्द रंग के अंडों की पट्टियाँ अक्सर त्यौहार की डिशों में इस्तेमाल की जाती हैं। एक छोटे प्याले में एक अंडा तोड़ लें, सफ़ेद झिल्ली को हटा दें जो कि सफ़ेद रेशादार उजलात हैं और अंडे की जर्दी से जुड़े होते हैं।
1: एक चुटकी नमक अंडे में डालें और अच्छी तरह फेंट लें। फ्राइंग पैन को गर्म करें, पेपर नैपकिन को इस्तेमाल करते हुए तेल की हल्की सी तह लगा दें। एक खूबसूरत क्रेप बनाने के लिए जितना मुमकिन हो उतना कम तेल इस्तेमाल करें। सबसे अहम नुक्ता फ्राइंग पैन का दर्जा हरारत है। फ्राइंग पैन का दर्जा हरारत चेक करने के लिए अंडे के आमेजे के एक कतरे को चॉपस्टिक से फ्राइंग पैन में टपकाएं और इससे आने वाली आवाज़ को सुने। अगर आवाज़ बहुत तेज़ हो तो किंची तमागो ब्राउन हो जाएगा और अगर कोई आवाज़ ना हो तो अंडा नहीं पकेगा। अंडे के आमेजे के कतरों से कई मरतबा जांचें। दर्जा हरारत को मवाफिक बनाने के लिए चूल्हे को जलाएं और बुझाएं।
0: अगर आप ये आवाज़ सुने और अंडे का कतरा सफ़ेद हो जाए तो दर्जे हरारत ठीक है। अब फ्राइंग पैन में तमाम आमेजा डाल दें। अगर आप छोटा फ्राइंग पैन इस्तेमाल कर रहे हों तो दो छोटे क्रेप बनाएं।
1: अंडे के आमेजे को पूरे फ्राइंग पैन में फैला दें। फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़कर थोड़ा सा झुकाते हुए चारों तरफ घुमाएं ताकि तमाम हिस्से पक जाएं। आंच को धीमा रखें। जब अंडे की पूरी सतह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दें। क्रेप के नीचे एक चॉपस्टिक डालकर उसे पलट दें। पैन की हरारत पर दूसरी जानिब से पकने दें। क्रेप को निकालकर चॉपिंग बोर्ड पर रख दीजिए। अब इसे 4 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों में काटें और एक दूसरे के ऊपर रखें और 4 सेंटीमीटर लंबी बारीक पट्टियों में काट लें। हमवार कट हासिल करने के लिए छुरी को सीधा नीचे की जानिब खींचें।
0: तो आइए अब सुशी राइस को केक की शक्ल में ढालते हैं, जिसके लिए चावलों को अभी गर्म होना चाहिए। 16 से 18 सेंटीमीटर कुतर का एक गोल केक का सांचा तैयार करें। अगर आपके पास केक का सांचा नहीं है तो छोटी हांडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गत्ते के एक टुकड़े की भी ज़रूरत होगी ताकि चावलों को सांचे में बिठा सकें। गत्ते के टुकड़े को दायरे की शक्ल में काटें, जिसकी चौड़ाई इतनी हो कि सांचे के अंदर फिट हो जाए, और उस पर प्लास्टिक रैप चढ़ा दें। केक के सांचे में प्लास्टिक रैप लगाएं और अज्जा की तहें लगाना शुरू कीजिए। जो चीज़ केक के सबसे ऊपर होगी उसे पहले सांचे के पेंदे में डालिए।
1: आधे सफ़ेद चावल सांचे के अंदर डालें। चावल को बराबर से फैला दीजिए। गत्ते के दायरे को इस्तेमाल करते हुए चावलों को नीचे दबाएं। इससे केक की सतह हमवार हो जाएगी। उसके बाद शीता के मशरूम के स्लाइसेस से जायद पानी निकालकर उन्हें केक की पूरी सतह पर फैला दीजिए। अगली तह बाकी बचे हुए सफ़ेद सुशी राइस की होगी, जिसे गत्ते के दायरे से नीचे दबाएँ। फिर गाजर की पट्टियों से जायद पानी निकालें और उन्हें बराबर से फैला दें। तिलों वाले सुशी राइस शामिल करें और अपना वजन डालते हुए जोर से गत्ते के दायरे से दबाएं।
2: सुशी केक की दोदाई वा कोनो कतन नी इरेता मामा मोत्ते इकिमाशो।
1: पार्टी में ले जाते वक्त सुशी केक सांचे में ही रखें। भिंडियों के स्लाइसेस और किंची तमागो को डब्बों में रखें। अपने साथ ले जाने से पहले स्मोक सामन को गुलाब के फूल की शक्ल दीजिए।
0: सामन के स्लाइस को लंबाई में आधा काट लें। इनको हम 8 गुलाबों की शक्ल देंगे। हर टुकड़े को चॉपस्टिक के गिर्द लपेट कर गुलाब के फूल की साख्त बना लीजिए। जब गुलाब के फूल बन जाए तो चॉपस्टिक निकाल लें। इसके बाद हम मायोनीज तैयार करेंगे। एक छोटी प्लास्टिक की थैली में 2 या 3 खाने के चम्मच मायोनीज डालें। थैली के मुंह को रबड़ बैंड से बांध दें। बाद में जब केक को सजाना हो तो थैली के नीचे के

0: एक कोने को काट लें और दबाकर बाहर निकालें।
1: जब आप पार्टी में पहुंच जाएं, तो एक प्लेट में केक को उलट दीजिए। सबसे ऊपर किंची तमागो छिड़क दें। मायोनेज की थैली को एक कोने से 5 मिलीमीटर काटें और दबाकर बाहर निकालें। केक के बालाई किनारे पर गोल घुमाते हुए लगा दीजिए। सितारों की शक्ल की भिंडियां मायोनेज पर तरतीब से लगाकर सामन केक गुलाबों से सजा दीजिए। लीजिए, सुशी केक तैयार है। पॉटलक पार्टियों के लिए वो डिशें मौजूद होती हैं जो कई घंटे गुजरने के बाद भी अपनी साख और जायका बरकरार रखें। बच्चे और बड़े दोनों ही सुशी केक से लुत्फंदोज होंगे। खूबसूरती से सजाकर सबको हैरान कर दीजिए।
0: और सामेन, अब वक्त हुआ है कैच ऑफ द डे सेगमेंट का। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ अकसाम की ओशी जूशी या दबाई हुई सुशी का। तो सोफिया, सुशी के लफ्ज से आपके दिमाग में कौन सा तसव्वुर आता है?
1: गुल, मेरे दिमाग में जो एक आता है कच्ची मछली का टुकड़ा और उस एक लुकमे के बराबर सुशी राइस के साथ।
0: इसे निगीरी जूशी कहते हैं। इसके अलावा माकी जूशी यानी सुशी रोल और चिराशी जूशी यानी जिसके ऊपर कई अकसाम के अज्जा सजे होते हैं भी होती है। लेकिन आज हम जो सुशी केक बना रहे हैं वो ओशी जूशी की एक किस्म है।
1: इस किस्म की सुशी में सिरके वाले चावलों और मछली को एक सांचे में डालकर दबा दिया जाता है।
0: ओशी जूशी की तारीख निगीरी जूशी या माकी जूशी से भी ज्यादा पुरानी है। जापान के मुख्तलिफ इलाकों की अपनी मुनफरिद ओशी जूशी है जो इस इलाके की खसूसियात की अक्कासी करती है। बुहिरा जापान के किनारे वाके तोयामा प्रिफेक्चर के लोग मासू जूशी बनाते हैं जो नमक और सिरके के जायके वाली ट्राउट मछली और सुशी राइस से बनाई जाती है। बांस के पत्तों को लकड़ी के एक डिब्बे में रखते हैं। ट्राउट और चावलों को उससे ढक दिया जाता है। डिब्बे पर वजन रखकर सख्ती से दबाया जाता है। खाने से पहले आप बांस के पत्तों को उतार लें और बांस की खुशबू से लुत्फंदोज हों जो कि चावलों में बस जाती है। जापान का कदीम दारुल हुकूमत नारा अपनी काकिनो हाजूशी की वजह से जाना जाता है जो सिरके वाले चावलों पर नमक वाली मछली के बारीक स्लाइस रखकर एक मुस्ततील सांचे में मजबूती से दबाकर बनाई जाती है और उन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर जापानी फल के पत्तों में लपेट दिया जाता है। हिरोशिमा प्रिफेक्चर के की काकुजूशी भी कई तहों पर मुश्तमिल सख्ती से दबाई गई सुशी की एक किस्म है जिसे रंग बिरंगी सजावट मसलन देम्बू यानी गुलाबी रंग के मछली के फ्लेक्स, शीता के मशरूम और किंची तमागो से सजाया जाता है।
1: गुल, इसका मतलब है कि हम जापान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कई अकसाम की ओशी जूशी से लुत्फंदोज हो सकते हैं।
0: समय अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ होंगे। वाह जनाब, क्या खूबसूरत केक लग रहा है तस्वीर में।
1: वैसे कुल, ये तो आप भी बनाकर लोगों पर अपने सुगड़ापे की खूब धाक बैठा सकते हैं।
0: वैसे आपने भी तस्वीरें दिखाई है। अच्छा, अभी मौका हुआ तो जरूर कोशिश भी करेंगे।
1: भिल्कुल।
0: अभी तो ये बताएं कि अगर सामयिन सुशी केक बनाना चाहें और उन्हें शीता के मशरूम ही ना मिले तो फिर वो क्या करेंगे?
1: कोई बात नहीं, कोई सा भी मशरूम मिले, मसलन बटन मशरूम वगैरह, तो उन्हें आज के प्रोग्राम में बताई हुई तरकीब से तैयार कर लें। शीता के मशरूम क्योंकि खुश्क होते हैं इसीलिए इन्हें पानी में भिगोया जाता है। फ्रेश या टिन पैक वाले मशरूम के लिए ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: चलिए, ये मसला तो हो गया हल। अब ये बताएं कि वो गुलाब कैसे बनाएंगे?
1: ये बड़ा मसला है।
0: जो स्मोक सामन से तैयार किए गए हैं, क्योंकि सामन मछली तो अक्सर मिल भी जाती है लेकिन स्मोक्ड सामन मिलना जरा मुश्किल होता है।
1: जी, जोर किस पे हुआ है? स्मोक सामन पे।
0: जी,
1: मैंने भी काफी सोचा कि क्या किया जाए।
0: अच्छा,
1: तो एक बात समझ में आई कि क्यों ना हम इस तरकीब में तैयार की गई गाजर की पट्टियों से गुलाब बना लें, जिसके लिए हमें आधी की जगह पूरी गाजर इस्तेमाल करनी होगी और गाजर वाली तह में किसी सफेद मछली के स्लाइसेस को सोया सॉस, चीनी और नमक में पकाकर बिछा दें।
0: वाह, भी क्या आइडिया है। आप तो पाकिस्तान की आखी को वतनाबे बन गई है।
1: जरा नवाजिश आपकी।
0: तो सामीन, थोड़ी सी रद्दबदल के साथ आप भी पार्टी सुशी केक बना कर ले जाएं और खूब दाद वसूल करें।
1: और हाँ, घर पर बच्चों के साथ मिलकर भी जरूर बनाएं।
2: ये یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: جی سامعین، پروگرام آپ نے سنا، پسند تو آیا ہوگا اور آئیڈیا بھی بڑا منفرد لگا ہوگا، سوشی کیک۔ ویسے سوشی اب ہمارے ملکوں میں بھی کافی عام ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی کافی سوشی ریسٹورینٹ بن گئے ہیں اور اب ڈراموں میں بھی اکثر سوشی کھاتے دکھایا جاتا ہے۔ میں بھی جب پاکستان گئی تو سوشی ریسٹورینٹ جانے کا اتفاق ہوا۔ دلچسپ بات یہ کہ مثال کے طور پر امریکہ میں مقبول کیلیفورنیا رول کی طرح ترمیم شدہ سوشی کی جگہ بالکل جاپان میں دستیاب ٹکیا نما کچی مچھلی کے قتلوں سے بنی سوشی ہم نے وہاں کھائی، اور میری بیٹی کا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنی پسندیدہ سوشی مل گئی۔ تو آپ لوگ بھی اپنے علاقے میں دستیاب اجزاء سے ہماری ترکیب کے مطابق سوشی کیک بنائیں اور کسی پوٹلک پارٹی میں لے کر جائیں اور خوب داد وصول کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، nhk.jp/اردو۔ پتہ ایک بار پھر نوٹ کر لیں، nhk.jp/اردو۔ اور اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा, नमस्कार। इस बार आपके पत्रों के साथ लेकर आ रहे हैं एक मेहमान के साथ खास बातचीत। ये कौन है और किस बारे में है, आइए सुनते हैं।

0: मित्रों, हमने अपने कार्यक्रमों में अक्सर चर्चा की है कि भारतीय पर्यटकों के बीच जापान काफी लोकप्रिय हो रहा है। हर साल भारतीय सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
1: जी, और बीते दिनों पाक कला विशेषज्ञ और सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर नेहा दीपक शाह जापान आई थी और हमें उनसे बात करने का मौका मिला। नेहा जी ने अपना परिचय देते हुए हमें बताया।
2: करीबन 5 साल से आई बिन क्रिएटिंग कंटेंट। आजकल वीडियो कंटेंट ज़्यादा चलता है, सो मैं टिपिकली काफ़ी सारा रेसिपी कंटेंट बनाती हूँ। बचपन से मैं एक वेजिटेरियन रही हूँ, दैट इज़ वाई जो मैं कंटेंट बनाती हूँ इट्स मोस्टली वेजिटेरियन फूड। इट्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल कंटेंट बिकॉज आई लाइक टू ट्रैवल। मुझे लगता है कि आई लाइक टू शेयर जो चीज़ें मैंने वहाँ एक्सपीरियंस की हैं फ्रॉम अ वेजिटेरियंस पर्सपेक्टिव, मुझे वो शेयर करना अच्छा लगता है।
0: जापान के खाने के बारे में आम धारणा यही है कि यहाँ मांसाहारी भोजन ही मिलता है, लेकिन नेहा जी ने बताया कि वे विशुद्ध शाकाहारी हैं। तो जापान में भोजन को लेकर उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा क्या? क्योंकि अक्सर शाकाहारी पर्यटकों की यही शिकायत रहती है।
1: चलिए इस बारे में नेहा जी से ही उनके अनुभव जानते हैं।
2: आज मेरा 14th डे है इन जापान। मैंने एक भी इंडियन मील नहीं खाया है, यू नो। सो अगर ऑन एन एवरेज भी आप पकड़ो, मैंने 28 मील्स खाए हैं, मोर ज़्यादा ही खाए हैं। वो 28 मील्स हैव टिपिकली ऑल बिन जापनीज़। कावागुची को में भी हमको वीगन फूड मिल गया बहुत इजीली। हमें नारा में भी बहुत अच्छा वी इनफैक्ट नारा हैड सम एक्सेप्शनल फूड, माइंड ब्लोइंग। ओसाका में भी एक्चुअली सम ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट्स ओसाका में थे, एंड क्योटो हैड फिनोमिनल। मतलब मुझे लगता है जापान का बेस्ट ग्योज़ा जो मैंने खाया, एंड आई एट ग्योज़ा एटलीस्ट लाइक 15 जगह इन क्योटो। क्योटो वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था एक्चुअली। क्योटो का खाना भी बहुत अच्छा था। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे, बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, जो मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा तोफू आगेदाशी कभी नहीं खाया है। इट वॉज सो गुड, सो गुड, यू नो। सो लाइक आई सेड कि दीज आर ऑल क्लासिक रेस्टोरेंट्स जिन्होंने अडेप्ट किया है टू फाइंड, यू नो, टू मेक वीगन फूड अडेप्टेबल, क्योंकि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे वेजिटेरियंस आ रहे हैं। इट्स नाइस टू सी ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट्स केटर टू वेजिटेरियंस एंड वीगन्स।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। ग्योजा यानी जापानी मोमो और रामेन हुआ जापान का सूप नूडल जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है।
1: जी, रामेन और ग्योजा जापान का लोकप्रिय व्यंजन कहा जा सकता है।
0: वैसे कितनी अच्छी बात है कि वे टोक्यो ही नहीं, जापान के अलग अलग शहरों में भी जापान के मूल स्वाद का आनंद ले सकें, वो भी शाकाहारी।
1: जी हाँ, बीते कई साल में मैंने अनुभव किया है कि यहाँ अब वीगन खाना काफी आसानी से मिलने लगा है। इस बढ़ते वीगन चलन के बारे में नेहा जी ने कहा।
2: इनफैक्ट मैंने कई सारे रेस्टोरेंट्स में डाइन किया। आई गॉट टू डाइन एट सम मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट, सम लोकल रेस्टोरेंट, स्ट्रीट स्टाइल फूड, सारा कुछ। मतलब बिकॉज जापान बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो रहा है, जापान का खाना बहुत फेमस हो रहा है। एज अ वेजिटेरियन ऑफकोर्स मुझे लगता है 10-12 साल पहले अगर लोग बोलते तो ये सही था कि अरे जापान में बहुत वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, बट मुझे लगता है कि वीगन फूड हैज़ बिकम अ थिंग इन जापान एज वेल। बहुत सारे डेडिकेटेड वीगन रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे डेडिकेटेड वीगन मेन्यूज़ है, वेजिटेरियन मेन्यूज़ है। ये प्रोग्रेशन देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी बाय द बुक्स कंट्री है, राइट, वो कुछ ज़्यादा चेंजेस जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट वॉज़ नाइस टू सी कि किस तरीके से इतना उन्होंने अपने ट्रेडिशनल क्यूजीन को वीगन फूड में अडेप्ट किया है। आज मैं एक रेस्टोरेंट में गई जो शिबुया में है, इट्स कॉल्ड वीगन सुशी। इनक्रेडिबल। मतलब अगेन, इंडिया में बहुत सुशी मिलती है बट वो काफ़ी इंडियनाइज्ड है, बट टू टेस्ट ऑथेंटिक सुशी मेड बाय जापानीज पीपल जस्ट द वे इट्स सपोज टू बी, वो भी वेजिटेरियन, वीगन, नॉट इवन वेजिटेरियन, वीगन, वॉज माइंड ब्लोइंग, वॉज वेरी वेरी नाइस।
0: वाकई इस तरह के बदलाव अपनाने से जापानी व्यंजनों की लोकप्रियता दुनिया भर में और बढ़ेगी।
1: नेहा जी, ना सिर्फ खाना बल्कि जापानी लोगों की सहज कार्य दक्षता और परिश्रमी स्वभाव की भी कायल हुई। उन्होंने एक रेस्तरां के बारे में अपना यादगार अनुभव बयां किया।
2: ओसाका में एक रेस्टोरेंट है, इट्स अ वीगन रेस्टोरेंट, इट्स अनरियल। बड़ा जगह है, छोटा जगह नहीं है। एक औरत उस पूरे रेस्टोरेंट को चलाती है एंड इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग टू सी हाउ शी फंक्शंस। आई वुड गो जस्ट टू एक प्रोजेक्ट स्टडी के लिए, बिकॉज उसने इतना अमेजिंगली हर चीज़ को वहाँ पे क्रिएट किया है। एक बूथ है जहाँ पे वो ऑर्डर लेती है, वही ऑर्डर लेती है, वही खाना पकाती है, सब कुछ वही कर रही है। ग्राउंड फ्लोर पे ऑर्डर लेती है और हैव टू सिट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। उसने अपना नीचे के बूथ का प्रोजेक्शन ऊपर दिया है एंड हर चीज़ वहाँ पे वॉल्स पे मेंशनड है। सिर्फ एक वॉल पे नहीं, हर वॉल, तो आपकी हर साइट में वो इंस्ट्रक्शंस मेंशनड है। मतलब लाइक आई सेड कि एक कंज्यूमर के दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे 100% उसका आंसर वहाँ लिखा हुआ है। मतलब बहुत क्यूटली उसने एक चीज़ लिखी थी। तो मैं ऊपर गई एंड मुझे नीचे वापस आना था तो कुछ ऑर्डर देने के लिए, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए। उधर लिखा हुआ था कि आई एम नॉट हियर राइट नाउ, नो आई एम कुकिंग राइट नाउ, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, प्लीज़ फील टू हेल्प योर सेल्फ विद अ ड्रिंक, एवरी ड्रिंक इज़ 200 yen, एंड इन केस आई डोंट कम बैक इन 18 मिनट्स, योर ड्रिंक इज़ फ्री। आई वॉज वेरी अमेज्ड, आई लव दैट प्लेस।
0: अरे वाह, क्या कमाल का कौशल और फुर्ती है। उस महिला ने अकेले ही पूरे रेस्तरां की कमान संभाली हुई थी।
1: जी, और देखिए ना, इस महिला का अपने ग्राहकों की साफ नियत पर

0: भी पूरा विश्वास है। अरे कमाईनी जी, नेहा जी को एक और मजेदार अनुभव हुआ जिसमें जापानी खाने में भारत का मिश्रण था। वो क्या था नेहा जी ने बताया?
1: आज मैंने एक जगह पे रामेन खाया जिसमें there was a papad. Can you imagine? There was an actual papad in it, and he puts a lot of Indian masalas. His ramen has miso, but it also has like a lot of. He makes his own curry powder, which is like the garam masala. So my taste buds were just confused. कि मैं क्या खा रही हूँ? And I was like, so culture in general, थोड़ा सा मतलब जब हम लोगों को मिलते हैं, हम उनसे कुछ adopt करते हैं, कुछ अपना देते हैं. That's what it is. And yeah, this for me was outstanding. It was not my favorite ramen, but definitely something that I will remember. That I, and this is a Japanese chef. This is not an Indian guy. This is the chef.
2: Ramen mein papad aur garam masala? ऐसा संगम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ।
0: सच में कुछ अलग ही स्वाद रहा होगा। नेहा जी से हमने जानना चाहा कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो जापान आने वाले पर्यटकों को खाना ही चाहिए। उनकी सिफारिश थी
1: सो डेफिनेटली रामेन। यहाँ पे शायद बहुत सारे रामेन रेस्टोरेंट्स हैं। हर यहाँ पे रामेन इज लाइक दाल, राइट? हर घर की अलग होती है। आपको हर जगह अलग रामेन मिलेगा, कोई दो जगह आपको सेम, मेरे को सेम रामेन नहीं मिला है। इट्स बिन डिफरेंट एवरीवेयर। एज अ वेजिटेरियन आई वुड से डेफिनेटली द ग्योज़ा। अगेन मेरे हिसाब से द बेस्ट ग्योज़ा इन जापान, द वन दैट आई एट वाज इन क्योटो। रामेन अगेन आई एम स्प्लिट, बहुत सारी जगह मुझे पसंद आई। माय फेवरेट डिश फ्रॉम दिस जापान ट्रिप वाज एक्चुअली द काट्सू करी। सो मुझे काट्सू बहुत पसंद, आई मेक काट्सू, बट The one that I ate in Osaka was mind-blowing. बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि we went there for lunch and dinner. It was so good. Ramen, gyoza and katsu. Sushi, like I said, सबको शायद पसंद नहीं आएगी जापान में, क्योंकि इंडिया में सुशी बहुत अलग मिलती है। It's very American.
2: अच्छा, वीगन काट्सू करी भी होती है? मित्रों, असल में काट्सू एक जापानी व्यंजन है। इसे बनाने के लिए मांस या मछली को मैदे में लपेटा जाता है, उसके बाद इसे अंडे के घोल में डाला जाता है और फिर उसे ब्रेड के चूरे में लपेटा जाता है। ये तीन स्टेप्स करने के बाद उसे तेल में तला जाता है। काट्सू काफी कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है।
0: खमाईनी जी, मैं भी यैम यानी जमीकन से बना वीगन काट्सू खा चुकी हूँ। सचमुच वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट होता है।
2: नेहा जी ने हमारे शाकाहारी मित्रों के लिए वाकई बहुत बढ़िया जानकारी दी है। अब जापान आने वाले शाकाहारी पर्यटक निश्चिंत होकर यहाँ के व्यंजन खा सकते हैं और घूम सकते हैं।
0: जी हाँ, और मित्रों, नेहा दीपक शाह के साथ ढेर सारी बातें हुई थी। बातों का ये सिलसिला अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। पत्र लिखकर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी, और जापानी व्यंजनों के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी जरूर बताएं।
2: और देखिए, अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी बताने का, तो फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
3: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: कार्यक्रम चेरी के देश में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं श्रोता मित्रों के फेसबुक कमेंट से।
2: वैसे आजकल श्रोता मित्र फेसबुक पर डाली जा रही रील्स को काफी पसंद कर रहे हैं। याद है ना, हमने स्टूडियो में रेलगाड़ी बनाई थी और
0: जी हाँ।
2: और बरसों बाद मुझे इससे खेलने में बहुत मजा आया।
0: जी हाँ, हमारा बचपन दोबारा याद आ गया। और देखिए, इस पर बहुत सारे मजेदार कमेंट्स भी मिल रहे हैं। बीते सप्ताह रेलगाड़ी के बारे में चेरी के देश से कार्यक्रम की प्रोमो रील को बहुत लोगों ने देखा। दीपक जोशी ने कमेंट किया, मैं भारत से हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मुझे पसंद आया।
2: पिछले सप्ताह हमने श्रोता मित्रों से चेरी के देश से कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अनुरोध किया था। महज 4 दिन में इसकी पहुंच 5,000 से अधिक लोगों तक थी। और लोगों ने अपने विचार भी साझा किए। नानौल हरियाणा से उमेश कुमार शर्मा लिखते हैं, चरी के देश से कार्यक्रम श्रोताओं के विचारों का मंच है, जिसे मैंने काफी वर्षों तक रेडियो जापान पर सुना है और अब इंटरनेट पर इसे पुनः सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरिगातो गोजाइमस।
0: उमेश जी, एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के साथ ये स्नेह बनाए रखने के लिए दिल से आभार।
2: ये बात तो है, इंटरनेट पर भी कार्यक्रम के आने से अब समय की पाबंदी नहीं रही, इन्हें एक सप्ताह तक जब चाहें सुन सकते हैं आप।
0: जी बिल्कुल, और देखिए पिछले सप्ताह की प्रोमो रील ने कई पुराने मित्रों को जगाने का काम किया है। जी हाँ, कृष्ण कुमार जायसवाल का कमेंट है, शेरी के देश से मेरा बरसों पुराना प्रिय कार्यक्रम है। कैलाश शर्मा कैलाश, लता पांडे, नवीन शर्मा, नरेंद्र कश्यप, राजीव मुवाल ने नाइस और दिल की इमोजी के जरिए अपना प्रेम प्रकट किया है। भई ये इमोजी ठीक है, लेकिन दो लाइन भी जरा लिख दीजिए।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वहीं कालीचरण स्नेही लिखते हैं, ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है। जर्नलिस्ट दिलीप यादव ने लिखा है, बहुत खूब है आपका कार्यक्रम। कुमाकाया जापान से राजीव मुवाल ने गुड मॉर्निंग कहा है।
0: आपको भी गुड मॉर्निंग जी। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। कार्यक्रम सुने और अपनी राय हम तक पहुंचाएं, फिर चाहे वो फेसबुक पर दो लाइनें हो।
2: जी जी, जापान के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी हमसे पूछें। पत्र भेजने की प्रक्रिया बहुत आसान है, चरी के देश से कार्यक्रम के विवरण में पत्र भेजने की लिंक है,
0: और अगर वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर बैनर पर यहाँ क्लिक कर संदेश भेजें लिखा दिख जाएगा।
2: तो बिना देर किए अपनी राय भेजें। और देखिए हमारा अगला पत्र है सुरेश अग्रवाल जी का,
0: केसिंगा ओडिशा वाले सुरेश अग्रवाल जी।
2: जी जी जी, लिखते हैं, आदरणीय शांग्रीला जी एवं कामायनी जी, सहस्नेह नमस्कार। दिनांक 23 अगस्त के कार्यक्रम चरे के देश से की शुरुआत में सितंबर माह में जापान में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के संबंध में दी गई जानकारी ने मन प्रसन्न कर दिया। आशा है कि इन खेलों से जुड़ी गतिविधियों की पल पल की जानकारी भी आपके माध्यम से हम श्रोता मित्रों तक निरंतर पहुंचती रहेगी।
0: सुरेश जी, पत्र के लिए आभार, आपको जानकारी अवश्य मिलती रहेगी। और मित्रों आप भी बताइए कि आपको किन तरह के खेलों में रुचि है, क्या किसी तरह का कोई खेल खेलते हैं तो ये भी जरूर बताइएगा, और साथ ही ये बताइएगा कि आप किस खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, किस खिलाड़ी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। आगामी कार्यक्रम में आपके पत्रों को हम जरूर शामिल करेंगे
2: जी।
0: और कमाईनी जी, देखिए अगस्त का महीना जापान के लिए कई त्रासद स्मृतियां लेकर आता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पहले हिरोशिमा और नागासाकी अणु बम हमले से नष्ट हो गए थे। इस स्मृति सभा की खबर को एक वीडियो क्लिप के जरिए हमने लोगों तक पहुंचाया था।
2: हिरोशिमा पर विश्व के पहले अणु बम हमले की 21वीं बरसी पर आयोजित सभा में देश विदेश के अनेक नागरिकों ने हिस्सा लिया और प्रातः ठीक 8:15 बजे जैसे सब कुछ थम गया। लोगों ने मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।
0: और जो लोग हिरोशिमा नहीं पहुंच सके उन्होंने फेसबुक पर कमेंट के जरिए इस क्लिप पर अपनी संवेदना व्यक्त की। करीब 1500 लोगों ने कमेंट किया है, सभी लेना तो संभव नहीं है लेकिन ये कुछ कमेंट हैं। रवि आनंद लिखते हैं, विकसित देश बनने के बाद भी जापान अपने नागरिकों को नहीं भूला है, समृद्ध जीवन शैली के बावजूद लोगों का स्वभाव विनम्र है।
2: यश कश्यप लिखते हैं, 6 अगस्त को हिरोशिमा अणु बम हमले की 21वीं बरसी पर शहीदों को शत शत नमन। नितिन शर्मा का कहना है, यही देश आज फिर अपनी मेहनत से टेक्नोलॉजी में विश्व में पहले स्थान पर है।
0: पंकज राठौर कहते हैं, वे सभी जापानी लोगों का सम्मान करते हैं। राहुल भारद्वाज ने लिखा है, जापान हमारा अभिन्न मित्र देश है और हम उनके सुख दुख के साथी हैं।
2: मनोज कुमार विश्वकर्मा, हे भगवान, दोबारा ये घटना कभी ना हो। हम जापान के लोगों के साथ हैं। निरंजन कुमार चौधरी ने आह्वान किया है कि विश्व परमाणु विहीन हो ताकि सबका जीवन बच सके।
0: हम सब की भी यही प्रार्थना है कि फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो। कमाईनी जी जानती है, इस क्लिप को अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।
2: यानी कितने लोग हैं इस जो इस त्रासदी से व्यथित हुए हैं। हिरोशिमा की व्यथा ने उनके दिल को छुआ है। आशा है आगे भी आपसे इसी तरह हमें संदेश मिलते रहेंगे। हमें पत्र भेजने के लिए वेबसाइट पर सबसे ऊपर बैनर पर क्लिक करें या फिर फेसबुक पर दो लाइनों का संदेश तो लिखा ही जा सकता है।
0: जी, पूरी दुनिया के लिए मंगल कामना करते हुए एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अब जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
2: और कामायनी सिंह को। अगले अंक में फिर मिलेंगे।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: के लिए चूल्हे को जलाएं और बुझाएं।
1: अगर आप ये आवाज सुने और अंडे का कतरा सफेद हो जाए तो दर्जे हरारत ठीक है। अब फ्राइंग पैन में तमाम आमेजा डाल दें। अगर आप छोटा फ्राइंग पैन इस्तेमाल कर रहे हों तो दो छोटे करेब बनाएं।
0: अंडे के आमेजे को पूरे फ्राइंग पैन में फैला दें। फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़कर थोड़ा सा झुकाते हुए चारों तरफ घुमाएं ताकि तमाम हिस्से पक जाएं। आंच को धीमा रखें। जब अंडे की पूरी सतह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दें। क्रेप के नीचे एक चॉपस्टिक डालकर उसे पलट दें। पैन की हरारत पर दूसरी जानिब से पकने दें। क्रेप को निकालकर चॉपिंग बोर्ड पर रख दीजिए। अब इसे 4 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों में काटें और एक दूसरे के ऊपर रखें और 4 सेंटीमीटर लंबी बारीक पट्टियों में काट लें। हमवार कट हासिल करने के लिए छुरी को सीधा नीचे की जानिब खींचें।
1: तो आइए अब सुशी राइस को केक की शक्ल में ढालते हैं, जिसके लिए चावलों को अभी गर्म होना चाहिए। 16 से 18 सेंटीमीटर कुतर का एक गोल केक का सांचा तैयार करें। अगर आपके पास केक का सांचा नहीं है तो छोटी हांडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गत्ते के एक टुकड़े की भी ज़रूरत होगी ताकि चावलों को सांचे में बिठा सकें। गत्ते के टुकड़े को दायरे की शक्ल में काटें, जिसकी चौड़ाई इतनी हो कि सांचे के अंदर फिट हो जाए, और उस पर प्लास्टिक रैप चढ़ा दें। केक के सांचे में प्लास्टिक रैप लगाएं और अज्जा की तहें लगाना शुरू कीजिए। जो चीज़ केक के सबसे ऊपर होगी उसे पहले सांचे के पेंदे में डालिए।
0: आधे सफ़ेद चावल सांचे के अंदर डालें। चावल को बराबर से फैला दीजिए। गत्ते के दायरे को इस्तेमाल करते हुए चावलों को नीचे दबाएं। इससे केक की सतह हमवार हो जाएगी। उसके बाद शीता के मशरूम के स्लाइसेस से जायद पानी निकालकर उन्हें केक की पूरी सतह पर फैला दीजिए। अगली तह बाकी बचे हुए सफ़ेद सुशी राइस की होगी, जिसे गत्ते के दायरे से नीचे दबाएँ। फिर गाजर की पट्टियों से जायद पानी निकालें और उन्हें बराबर से फैला दें। तिलों वाले सुशी राइस शामिल करें और अपना वजन डालते हुए जोर से गत्ते के दायरे से दबाएं।
2: सुशी केक की दोदाई वा कोनो कतन नी इरेता मामा मोत्ते इकिमाशो।
0: पार्टी में ले जाते वक्त सुशी केक सांचे में ही रखें। भिंडियों के स्लाइसेस और किमची तमागो को डब्बों में रखें। अपने साथ ले जाने से पहले स्मोक सामन को गुलाब के फूल की शक्ल दीजिए।
1: सामन के स्लाइस को लंबाई में आधा काट लें। इनको हम 8 गुलाबों की शक्ल देंगे। हर टुकड़े को चॉपस्टिक के गिर्द लपेट कर गुलाब के फूल की साख्त बना लीजिए। जब गुलाब के फूल बन जाए तो चॉपस्टिक निकाल लें। इसके बाद हम मायोनीज तैयार करेंगे। एक छोटी प्लास्टिक की थैली में 2 या 3 खाने के चम्मच मायोनीज डालें। थैली के मुंह को रबड़ बैंड से बांध दें। बाद में जब केक को सजाना हो तो थैली के नीचे के एक कोने को काट लें और दबाकर बाहर निकालें।
0: जब आप पार्टी में पहुंच जाएं तो एक प्लेट में केक को उलट दीजिए। सबसे ऊपर किमची तमागो छिड़क दें। मायोनेज की थैली को एक कोने से 5 मिलीमीटर काटें और दबाकर बाहर निकालें। केक के बालाई किनारे पर गोल घुमाते हुए लगा दीजिए। सितारों की शक्ल की भिंडियां मायोनेज पर तरतीब से लगाकर सामन केक गुलाबों से सजा दीजिए। लीजिए, सुशी केक तैयार है। पॉटलक पार्टियों के लिए वो डिशें मौजूद होती हैं जो कई घंटे गुजरने के बाद भी अपनी साख्त और जायका बरकरार रखें। बच्चे और बड़े दोनों ही सुशी केक से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। खूबसूरती से सजाकर सबको हैरान कर दीजिए।
1: और सामेन, अब वक्त हुआ है कैच ऑफ द डे सेगमेंट का। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ अकसाम की ओशी जूशी या दबाई हुई सुशी का। तो सोफिया, सुशी के लफ्ज़ से आपके दिमाग में कौन सा तस्वर आता है?
0: गुल, मेरे दिमाग में जो एक आता है कच्ची मछली का टुकड़ा और उस एक लुकमे के बराबर सुशी राइस के साथ।
1: इसे निगीरी जूशी कहते हैं। इसके अलावा माकी जूशी यानी सुशी रोल और चिराशी जूशी यानी जिसके ऊपर कई अकसाम के अज्जा सजे हो

0: करते हैं भी होती है। लेकिन आज हम जो सुशी केक बना रहे हैं वो ओशी जुशी की एक किस्म है।
1: इस किस्म की सुशी में सिरके वाले चावलों और मछली को एक सांचे में डालकर दबा दिया जाता है।
0: ओशी जुशी की तारीख निगिरी जुशी या माकी जुशी से भी ज्यादा पुरानी है। जापान के मुख्तलिफ इलाकों की अपनी मुनफरिद ओशी जुशी है जो इस इलाके की खसूसियात की अक्कासी करती है। बुहिरा जापान के किनारे वाके तोयामा प्रीफेक्चर के लोग मासू जुशी बनाते हैं जो नमक और सिरके के जायके वाली ट्राउट मछली और सुशी राइस से बनाई जाती है। बांस के पत्तों को लकड़ी के एक डिब्बे में रखते हैं, ट्राउट और चावलों को उससे ढक दिया जाता है, डिब्बे पर वजन रखकर सख्ती से दबाया जाता है। खाने से पहले आप बांस के पत्तों को उतार लें और बांस की खुशबू से लुत्फंदोज हों जो कि चावलों में बस जाती है। जापान का कदीम दारुल हुकूमत नारा अपनी काकिनो हाजुशी की वजह से जाना जाता है जो सिरके वाले चावलों पर नमक वाली मछली के बारीक स्लाइस रखकर एक मुस्ततील सांचे में मजबूती से दबाकर बनाई जाती है और उन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर जापानी फल के पत्तों में लपेट दिया जाता है। हिरोशिमा प्रीफेक्चर के की काकू जुशी भी कई तहों पर मुश्तमिल सख्ती से दबाई गई सुशी की एक किस्म है जिसे रंग बिरंगी सजावट मसलन देम्बू यानी गुलाबी रंग के मछली के फ्लेक्स, शीता के मशरूम और किंची तमागों से सजाया जाता है।
1: गुल, इसका मतलब है कि हम जापान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कई अकसाम की ओशी जुशी से लुत्फंदोज हो सकते हैं।
0: सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाए। हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ होंगे। वाह जनाब, क्या खूबसूरत केक लग रहा है तस्वीर में।
1: वैसे कुल ये तो आप भी बनाकर लोगों पर अपने सुगड़ापे की खूब धाक बैठा सकते हैं।
0: वैसे आपने भी तस्वीरें दिखाई है। अच्छा, अभी मौका हुआ तो जरूर कोशिश भी करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो ये बताएं कि अगर सामयिन सुशी केक बनाना चाहें और उन्हें शीता के मशरूम ही ना मिले तो फिर वो क्या करेंगे।
1: कोई बात नहीं, कोई सा भी मशरूम मिले, मसलन बटन मशरूम वगैरह, तो उन्हें आज के प्रोग्राम में बताई हुई तरकीब से तैयार कर लें। शीता के मशरूम क्योंकि खुश्क होते हैं इसीलिए इन्हें पानी में भिगोया जाता है। फ्रेश या टिन पैक वाले मशरूम के लिए ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: चलिए, ये मसला तो हो गया हल। अब ये बताएं कि वो गुलाब कैसे बनाएंगे।
1: ये बड़ा मसला है।
0: जो स्मोक सामन से तैयार किए गए हैं, क्योंकि सामन मछली तो अक्सर मिल भी जाती है लेकिन स्मोक्ड सामन मिलना जरा मुश्किल होता है।
1: जी, जोर किस पे हुआ, स्मोक सामन पे।
0: जी,
1: मैंने भी काफी सोचा कि क्या किया जाए।
0: अच्छा,
1: तो एक बात समझ में आई कि क्यों ना हम इस तरकीब में तैयार की गई गाजर की पट्टियों से गुलाब बना लें, जिसके लिए हमें आधी की जगह पूरी गाजर इस्तेमाल करनी होगी। और गाजर वाली तह में किसी सफेद मछली के स्लाइसेस को सोया सॉस, चीनी और नमक में पकाकर बिछा दें।
0: वाह, भी क्या आइडिया है। आप तो पाकिस्तान की आखी को वतनाबे बन गई है।
1: जरा नवाजिश आपकी।
0: तो सामिन, थोड़ी सी रद्दबदल के साथ आप भी पार्टी सुशी केक बना कर ले जाएं और खूब दाद वसूल करें।
1: और हाँ, घर पर बच्चों के साथ मिलकर भी जरूर बनाएं।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
1: जी सामिन, प्रोग्राम आपने सुना, पसंद तो आया होगा और आइडिया भी बड़ा मुनफरिद लगा होगा, सुशी केक। वैसे सुशी अब हमारे मुल्कों में भी काफी आम होती जा रही है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी काफी सुशी रेस्टोरेंट बन गए हैं और अब ड्रामों में भी अक्सर सुशी खाते दिखाया जाता है। मैं भी जब पाकिस्तान गई तो सुशी रेस्टोरेंट जाने का इत्तफाक हुआ। दिलचस्प बात ये कि मिसाल के तौर पर अमेरिका में मकबूल कैलिफोर्निया रोल की तरह तरमीम शुदा सुशी की जगह बिल्कुल जापान में दस्तियाब टिकिया नुमा कच्ची मछली के कतलों से बनी सुशी हमने वहाँ खाई और मेरी बेटी का तो खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था कि पाकिस्तान में बैठकर अपनी पसंदीदा सुशी मिल गई। तो आप लोग भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से हमारी तरकीब के मुताबिक सुशी केक बनाएं और किसी पॉटलक पार्टी में लेकर जाएं और खूब दाद वसूल करें। اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا. اور اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے nhk.jp/urdu. پتہ ایک بار پھر نوٹ کر لیں nhk.jp/urdu. اور اب ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.